छ्यादलो रेडियो मर्सङदी 95 मेगा हर्ज देर इन्टरनेट अनलाइन रेडियो मर्सङदी .org नानर 8 बजे खबर तम क्यू मर्सङदी फेतेरी खुशीमाय तमुसोला तेवा म ऐश्वरी क्रार्वे फेते।

तिनी हिन्दू धर्म महादिवना ब्रै महिना लागि हरितालिका तीज तिनीमै दिनहरी नारीमै महादेवैना पूजा लैमरी तीज महादेशी म भाद्र शुक्ल पक्ष न तृतीया तिथि नै दिनारी परिवार तीजा दिनारी तिनी व्रत चिमारी टिभा परम्परा समेत म महर्षि अवस्थापजी फिभा अनुसार चतुर्दशी देवालो तृतीया तिथि जो व्रत ऐना लागे छ्याभा माधी म द्वितीय तिथि देवालो यो फुभा दिना तिनी हरितालिका व्रत टिसी म चु दिनारी भ्यालभ मिमे जी छ्यावा फायोर्खे विवाह दिएर भ्यालाई खाबा मृमेजी आफै न फाइना दीर्घायु न लागि तिनी वेदिनरी व्रत टिबा लम ओही सबै वर्ष दारी हरितालका तिजैना दिनारी धन्दयौं क्री महिना ओसु त क्यायो नाचगान लैमरी सुरु तम्लो कार्यालय समुदाय टोल टोले तिजैना रमछम तम्लो मुरी मैदे र पिउमै हौलो बराबर यो नाच सेमरी मनिम्लो साधन हौलो ओसो त्रिशुली खोलारी खबा बलादी बालयो मानवी क्षेत्र तबालिसो चौ वर्ष हरितालिका तिज औपचारिक कार्यक्रममै पनि प्रभावित तैम त्रिशुली खबा बाढीना कारण मानवीय क्षेत्र तबादी बालय देश सोकरी पर्दिबा बेलारी लम्जुङ्गा रे भिनी ओसो तयलबा कार्यक्रममै स्थगित लमिम लम्जुगर हेदा अब मिमैजे कटानी सुरु तपाईँ बालयो किसान मैज अलैजे तुईबा सुरुलाई म व्यावसायिक रूपले अलैचीलाई खब किसान मैजी भदौलाई दियाबे बालयो सात सय टक्या 1200 मिटर फी हेरी थेमेजी अलैची तुईबा सुरुलाई म छु बर्चु चुब मुजी मचु वर्ष बिना अलैची तिभा सुरु लभ व्यवसाय महासंघ लम्जुङ जे पी म त खोजिला पे कम उचाइरी मोबा अलैची तुई बसुरु लसुम विषय ते दिन लिसु 1200 मिटर भन्दा फेरि उचाइरी अलैची तिभा सुरु लभ महासंघ उपाध्यक्ष देर अलैची कृषक जे तामाङ से बी म पहाड़ी जिल्ला लम्जुङरी हिउँदे तरकारी लगभग सुरुतै म म्ला सेवा दिएर नारे रुइल खाबा लिसु चो बेला तोखो थेमे तरकारी रुई भरि व्यस्त म किसान मिजी काउली बन्दा ब्रोकाली राइठा मुला चम्सुर लगायत पे तरकारीमै रुइबा सुरुलाई म भदौ दक्या कार्तिकसम्म हिउँदे बाली लगेबा समय मुभा कृषि विकास कार्यालय जेपी म हाइब्रिड भन्दा नासुथिमै जाँदा पे तरकारीमा सभा तभा तैमारी किसानमै आकर्षक बढी मुभा बिमो काउली बन्दा लगेबा तरकारी न बेदनामय चुबा लभा चोहो बेला किसान व्यस्त म लम्जुङारी 700 बढी हेक्टर क्षेत्रफलारी हिउँदे तरकारी उत्पादन तमु विषया तेलारी वार्षिक 7000 मेट्रिक टन भन्दा बढी हिउँदे तरकारी रोबा बिमो लम्जुङ सदरमुगम बेसार्थ क्या सुरु तब अन्नपूर्ण पदमार्ग क्यारी यात्रै न सिजन सुरु तै म सिजन सुरु तपाईँ बालयौं स्वदेशी र विदेशी पर्यटक महिना खबायो भने सुरु तै म अंग्रेजी वर्षायन अनुसार सेप्टेम्बर त क्या डिसेम्बरसम्म पर्यटकमा खबर सिजन महादी म अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजन एकापको दिन अनुसार तोखो लम्जुङ तैमारी अन्नपूर्ण क्यारी पर्यटक महिना संख्या दिनारी 60 दक्या फिरे थोनी म अफ सिजन रे प्राय सुनसान पारे तरिबा क्या तोखो बाहिर पर्यटकमय खबर सुरु तपाईँले सु चहल पहललाई पनि बढ्दै म बेसर 11 रामचोक बेसिर भए सती पातल मुनि महिना सामुदायिक थिए उपभोक्त समिति अध्यक्ष डिकेन्द्र राज सिंहराई सर्वसम्मत चुन्दी म छेब अधिवेशन त क्या सिंहराई अध्यक्षतरी नयाँ कार्य समिति चुन्दी म समिति रूप उपाध्यक्ष डिलमाया सार्के सचिव प्रिय अमृत कुमार श्रेष्ठ को सदस्य शोभा सिंहराई चुन्दी म सदस्य मिरी गोविन्द राज कमली बेलीमाया बिका चिजमाया मगा हरिबहादुर सिंहराई दिएर दुर्गा नराल चुन्दी म कार्यक्रम सामुदायिक थिए नब्बे उपभोक्त समिति भए अध्यक्ष नीता सिंहराई अध्यक्ष दर्जेर विश्व नगरपालिका 11 भए वडा अध्यक्ष शिव जोशी न प्रमुख आतिथ्य मर्सङ्गी फेते तखोबे लागि छ गयो फेते छेउ भन्दा उहीँसो क्रार्प फेते फेरि देखे तिनी हरितालिका तीजा मुनिमैजी महादेवैना पूजा लैमरी मनुष्य म
त्रिशुली खबर विपत्ति जी क्या लमसंगे भी ती जाइन लेता जस औपचारिक कार्यक्रम स्थगित कार्यक्रम तबा खर्च मई विषय पीड़ित मैं सहयोग लमसंग हेदरी अलैची तुई शुरू लमजुंग रेबिनी हिउँदे तरकारी लगे के शुरू लिसो भए वर्षरी उत्पादन र कृषक मैना आकर्षण बढ्ती म नानल खबर तमुके मर्संगी फेते तोखो बेला छिजी प्राविधिक तु दिपेस्ते धन्यवाद पिमारी फेते कच्चे क्याङा खुसीमा तमुस्यो विदा किमु रेडियो मर्संगी 95 मेगा हर्ज दिएर इन्टरनेट अनलाइन रेडियो मर्संगी .org

0: मिथुन सर, आप यहाँ कैसे?
1: ये जुबिन की डायरी है जो मेरे रूम पे रह गई थी।
0: कौन जुबिन? मैं उन्हें नहीं जानती।
1: ओ, फिर तो ये डायरी आपको पढ़नी चाहिए, शायद ये आपको जानती है। प्लीज जरूर पढ़िएगा।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक एक बजे को छ।
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ.
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी.

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ.
2: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेक द डिफरेंस फील द एनर्जी